दुष्ट सबै तुम काबो, आप हद मोहे बचाबो, सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सबै करतारा, मोर अच्छा निज करदै करिया, सब बैरन को आसंग रिया।

दुष्ट छह शव सके न कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताहे उबारा।

कह बिबि विचार काश नाहे जल ते उपज तरंग ज्यों जल ही बिखै समाहे। दोहरा जब आयस प्रभु को पयो जन्म धरा जग आए अम्मै कथा संक्षेपते सब।

इतनी सेवा प्रदान करने की कीर्तन कर दिया, उल्ला दी माफी बख्शनी। अंप सत्कार भाई साहब गुरमेल सिंह जी कैनेडा वाले आप जी लड़ीवार कथा रही जोड़न गए। उल्ला पास प्यार का सहन करो जी।

रोम रोम कार कहत हैं, शास्त्र अनेक रोम रोम कार कहत हैं, अनेक शस्त्र जेड़े ने मेरे एक एक जेमे भाई साहब जी का बंद बंद कटिया सी, निके निके निके निके बंद तो भी टुकड़े टुकड़े कटे जाड़, पर साहबा तेरे नालो प्रीति ना जावे। अगले बोल, बिरथा अनेक आपदा अधीन दीन दुख, ग्रीक मौसीत माहे बरखन इस प्रात है, अनेका बिपता आ जाण, अनेका दुख आ जाण, अनेका तरह की गरीबी आ जावे, सर्दी गर्मी शरीर ते सहारी जावे, ओ सचे पातशाह सहारी जावेगी, पर मेरे साहबा तेरे नालों प्रीति ना जावे। तीजा बोल, गो दिज बधु विश्वास बंस कोट हत्या, त्रिशना अनेक दुख दुख बस गात है, गात नाम हुंदा शरीर दा, अनेक शरीर दुखड़े झलदा रवे। ते चौथा बोल कहिंदे, अनक प्रकार जोर सकल संसार सोध, पिए के बशो पल एक ना पुजात है, अनक प्रकार जोर आ जड़े उत्ते गड़े आ ना, अग साड़ देवे, पानी डोब देवे, सप डंग मार देवे, शस्त्र कट देवे, बिरथा अनेक आ जान, दुख सुख झले जान, कहिंदे मैं सारिया दे सारे झल लवांगा, अनक प्रकार जोर इन्हां नूं जोड़ लिया जावे, बड़े वड्डे दुख ने। पिया का पछो, पिया पति परमात्मा वाहिगुरु निरंकार, पर ओदे नालों मेरा विछोड़ा ना पवे। आखो सतनाम श्री, पिए के बछो पल एक ना पुजात है, कहिंदे है ते बड़े दुख ने, पर मेरे प्यारे दे विछोड़े दे बराबर एक भी नहीं है, एक भी दुख नहीं है। सलल निवास जैसे मीन की ना घटे रुच, दीपक प्रगास घटे प्रीत ना पतंग के, कुसुम सुभास जैसे तृप्त ना मद पको, उड़त आकाश आस घटे ना बेहंग के, कटा कन कोर मोर चातर हृदय उलास, नाद बाद सुन रात कटे ना कुरंग के, तैसे प्रे प्रेम रस रस कर साल संत, कटत ना तृष्णा परबल अंग अंग की। उन्हां दी प्रीति नहीं कटदी, रूप काम है दोस्ती जग अंदर जानी, भुखे साध है गंड है उवरती हानी, रूप ते काम दी दोस्ती है, इन्हां दी प्रीति हुंदी है, भुखे दी प्रशादे नाल प्रीति है, गुरसिख दी प्रीति कित्थे आवेगी। रूप है काम है दोस्ती जग अंदर जानी, भुखे साध है गंड है वो वरती हानी, जदों भुखा बंदा हुंदा स्वाद थोड़ी वेंदा है, ते रुखे मिस्से चों ही स्वाद आउंदा है, भुखे साध है गंड है वो वरती हानी। ऊंग है ऊंग है ऊंग है नींद सौड़, छोटा जिहा मंजा होवे, तुसीं इंडिया नूं जांदे शीट किन्नी हुंदी है, बंदा उत्थे घराड़े मारदा जांदा है, उत्थे सुत्ता जांदा है। ऊंग है सौड़ पलंग ज्यों, जे नींद आई होवे ते पलंग नहीं वेख्या जांदा, उत्थे ही नींद आ जांदी है, जिवें बंदा बैठा दरबार च सो जांदा, पलंग थोड़ी वेखदा है। जे नींदरा नहीं आई ते सोनिया सेजां ते भी नहीं जे आउणी। महाराज कहिंदे ऊंग है सौड़ पलंग ज्यों, सब रहण निहाणी, सारी रात लंघ जांदी है। रूप ते काम दी दोस्ती, भुखे ते साध दी कोई स्वादा नाल ही वेख्या जांदा। ऊंग है सौड़ पलंग ज्यों, सब रहण विहाणी, सोहणे सवरंग माणीए कर चोज वडाणी, पीर मुरीदा पिरहड़ी ओ अकथ कहानी। पीर कौन है? गुरु। मुरीद कौन है? तुसी। जिन्हां दी प्रीति गुरु नाल लग गई जे, ते श्री मान भाई गुरदास साहब जी कहिंदे अकथ कहानी, उन्हां दी कहानी नहीं कीती जा सकती, उन्हां दी महिमा ही नहीं कीती जांदी जिन्हां दी मेरे गुरु नाल प्रीति बन गई है। तुहानूं एक बार मैं शब्द सुनाया सी, तुसीं आखोगे जी हां जी सतनाम श्री वाहिगुरु। तनासरी राग दा शब्द है, भगत नामदेव जी दा शब्द है, जिहदे विच भगत साहब जी ने प्रेम दीआं वख वख परिभाषां दरड़ाईआं ने। कहिंदे मार वाड़ जैसे वीर

गुरुदेव अष्टपदी जय प्रसाद शक्ति है अमृत खाए तिस ठाकुर कौ रख मन माहे। जय प्रसाद सुगंध तन लावे तिस कौ सिमरत परम गत पावे। जय प्रसाद बसे सुख मंदिर तिसे त्याहे सदा मने अंदर। जय प्रसाद गृह संग सुख बसनाड़ पैर सिमरो तिस रसना। जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई है त्यावन जोग। जय प्रसाद पाड़ पटम्बर हंडावे तिसे त्याग कतवर लुभावे। जय प्रसाद सुख से सोई जय मन आठ पहर ताका जा सिंह भी जय। जय प्रसाद

पकरे। ब्रह्म ज्ञानी सगल गिरिनाथ ब्रह्म ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब प्रमाया ब्रह्म ज्ञानी ते कस ब्रह्म पाया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृहत अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन दे मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी के निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नान ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी एक उपराध ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाह ब्रह्म ज्ञानी पारपकार उमाह ब्रह्म ज्ञानी के नाही धंधा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा ब्रह्म ज्ञानी कह हो इस पला ब्रह्म ज्ञानी सुफल पला ब्रह्म ज्ञानी

निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी जस करे प्रव्याम ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइये ब्रह्म ज्ञानी को बाल बाल जाइये ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत

प्रचंड तिथे नाद विनोद कोट आनंद सर्वखंड की बाणी रूप तिथे घाट घड़िए बहुत अनूप ताकिया गल्ला कथिया ना जाहे जे को कह पिछे पछताए तिथे घड़िए सुरत बत मन बुद्ध तिथे घड़िए सुरा सिद्धा की सुध कर्मखंड की बाणी जोर तिथे होर ना कोई होर तिथे जोध महाबल सूर तिन मह राम रहे प्रभूर तिथे सीतो सीता महमा माहे ताके रूप ना कथने जाहे ना उह मरे न ठागे जाहे जिनके राम वसे मन माहे तिथे भगत वसे के लोह करे आनंद सच्चा मन सोए सचखंड वसे निरंकार कर कर वेखे नदर निहार

चकर बकर फिर चतुर चकर मानी पुरतीन लोक चौदह के बिखे जग जाप ही जह जाप आदि अनाद मूर्त थाप्यो सबे जे थाप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार सर्व सब रचियो स्वयं भवगण भंजनहार कालहीन कला संयुक्त काल पुरख देश धर्म धाम सो परम रहता भूत लख।

मनमन प्रणाम, मनमन सलाम, मनमन प्रणाम, निर्भय निकाम, अद्भुत प्रचंड मिदगत अखंड आलस्य कर्म आदर्श तर्म सर्वा पर नाढ्य आन डांड बाढ़ चाचरी शांत त्वा प्रसाद। गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियम करे नरनामे अकामे भुजंग भ्रियाद छंद। चतुर चक्र करता चतुर चक्र हरता चतुर चक्र दाने चतुर चक्र जाने चतुर चक्र वर्ती चतुर चक्र भरती चतुर चक्र पाले चतुर चक्र गाले चतुर चक्र पासे चतुर चक्र वासे चतुर चक्र माने चतुर चक्र दाने जा चरी छंद। ना सत्र है ना मित्र है ना परमंग ना पितर ना कर्मंग ना काये अजन्मंग अजाये ना चित्र है ना मित्र है परे है पवित्र है प्रतीस है अधीस है अदृश अग्रस भगवती शांत व प्रसाद। कथते के आ छिज देसा है के आ पिज भैसा के आ गंज कर्म है के आ पंच भ्रम है के आ पिज लोके के आ दुत सोके के भूत भरने के विभूत करना है के राज प्रवाह है के धर्मंग तुजा है के आ शोक भरने के सर्वा अपरण है के जगतंग कृति है के शत्रंग क्षत्रिय है के ब्रह्मंग स्वरूप के अनुभव रूप है कि आद अदेव के आप अपेव के चित्रंग भीन है के एक अधीन है के रोजी रजा के रही मेरे हक है के पाक बेअब के गैबल गैब के अफुल गुनाह है के शाह अनुशाह के कारण गुरिंद है के रोजी दहंद है के राज करीम के कर्मंग करीम के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र दान है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पावण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राजा है के सर्वत्र साजा है के सर्वत्र दीना है के सर्वत्र लीना है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देशा है के सर्वत्र पेशा है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राजा है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पुख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देशा है के सर्वत्र पेशा है के सर्वत्र मान है सदैव प्रधान है के सर्वत्र जाप्या के सर्वत्र थाप्या के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वंग गली में के ब्रह्मंग भई में के आकल आलाम के साहिब कलाम है के सुनल बजू है तमाम रजू है मे सुल सलाम है सलीखत मदाम है गनीम शिकस्त है गरीब लप्रस्त है बिलंदल मकान है जमीन समान है तमीजुल तमाम है रजुल निधान है हरीफुल अजीम है रजायक यकीना है अनेकुल तरंग है भेद है भंग है जीजुल निवाज है गनीम खराज है नृक स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रवाह है सुयुक्त सुधा है सदैव स्वरूप है बेदीन उभ है समस्तो पराज है सदा सर्वसाज है समसुल सलाम है सदैव अकाम है दरबार सुरभ अगाध है अनुभ है ओंगाद रूपे ओंगाद रूपे ना सुरभ अनंगी नामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिवर्गम दरबाधे अगंजे अगाधे सभुंग सुभंग सर्भागे सुसर्भा अनुरागे त्रिभुग सुरभ शिज शुत के नरक प्रणास है प्रतुल प्रवास है नृक प्रवाह सदैव सदा है विभुग सुरभ प्रजुक्त अनुप है निरुक्त सदा है विभुक्त प्र

है, अनास है, उदास है, अतंध है, अबंध है, अभक्त है, विरक्त है, नास है, प्रकाश है, रचंत है, सुनंत है, अलिख है, अधिक है, अलेख है, फेख है, अटा है, अगा है, असंभ है, अगम है, अनिल है, अनाद है, अनित है, सुनित है, अजात है, अजाद है, चरपट शांत अथवा प्रसाद, सर्वं हंता, सर्वं गंता, सर्वं ख्याता, सर्वं ज्ञाता, सर्वं हर्ता, सर्वं कर्ता, सर्वं प्राणं, सर्वं तरानं, सर्वं कर्मं, सर्वं धर्मं, सर्वं युक्ता, सर्वं मुक्ता, रसाबल शांत अथवा प्रसाद, नमो नरगणासे सदैव प्रकाशे अनंगं स्वरूपे भंगं विभूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाथे अगा स्वरूपेन्द्रवाद विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुप न पोतर न पुत्र न सत्तर न मित्र न ताते न माते न जाते न पाते न साकं श्री कै मितो मेक सदैव प्रवाह अजय है अजा है भगवती छंद त्व प्रसाद के जाहर अजहूर है के हाजर हजूर है हमेशुल सलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग है कृष्ण चिराग है के कामल करीम है के राज करहीम है के करम रोजी धंधे के राज करहीम है करीमुल कमाल है कृष्ण जमाल है करीमुल खराज है गरीबुल नवाज है हरीफुल शिकन है रासुल फिकन है कलंकं प्रनाश है समस्तुल निवास है अगंजुल गरीम है रजाय करहीम है समस्तुल सुबह है के साहिब ग्राह के नरकं प्रनाश है बहसुल निवास है के सर्वल गबन है महसुल रबन है तमामुल तमीज है समस्तुल अदीस है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परंग परमीश है समस्तुल अदीस है अदेशुल लेख है अमेशुल अपेख है जमीनुल जमा है अमेकुल इमा है करीमुल कमाल है के जुरत जमाल है के चलंग प्रकाश है के मित्र सुबास है कि अजब स्वरूप है कि मित्तो विभूत है कि मित्तो प्रसाह है कि आत्म प्रभा है कि अचलंग अनंग है कि मित्तो भंग है मधुभार छंद प्रसाद मुन मन प्रणाम गुणगर मुदाम अरबर अगंज हर नर प्रभंज अनगम अनगन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बरनर अमंड अनुभव नाश मुन मन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम अंशज अंग आसन अपंग उपमा अपार गदमित उदार जल थल अमंड दिशु से पंड जल थल मानदेश व्यंत अनुभवनाथ अर्था तुरास आजन बाहु एक सुदाह ओंकार याद कथनिया नाद कलखंड ख्याल गुरबर अकाल घर घर प्रणाम झिझर नाम अंश जगात अजना बात अन झंझ गात अन रंज बात अन टुट भंडार अन ठट अपार आठीठ अत ठीठ कर्म आठीठ धर्म अत ठीठ कर्म अन अनबरण अनंदाता मन धरबोल मना शांत त्व प्रसाद करुणालय है अर्कालय है कलखंडन है मैं मंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्वभारण है तृतके तरण है जाके करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वंग पर है सर्वंग कर है सर्पास्य है सर्वनाश्य है करुणाकर है विश्वंबर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है।

गवा संग्रह पूर्ण हुए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें शाड़ कोई अवरना त्याहूं जो बार चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिया है चौन चौन सात्र हमारे मारिया है आप हाथ मुझे उभर है मरण काल का त्रास निभर है उजो सदा हमारे पछा श्री सुजू करियो रक्षा राख लियो मैं राखण हारे साहिब सन सहाय बिहारे दीन बंदुष्टन के हंता तुमह पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बबतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विषण प्रकाशा

ठैठा सगरी सृष्टि खय अचंभव आदि जुगास रूप स्वयंभव अमृच्छा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवा तुत पाता सगल मलेश करो रण काता जे अस तो जित अब सरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हवे मरे पुरख जमन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो काल को एक बार ते है ताके काल निकट न है रक्षा हुए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दुष्टन जाए ने हर हाओ ताके ताब तनक में हर हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट छा शवाय सके।

तेरे भाणे सर्ब वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा आ गया पही अकाल के तबे चलायो पंथ।

महापुरखा की निंदा का वेख जे तपे नो फल लगा, सब गया तपे का कहलिया। बाहर बह पंचा बिच तपा सदाई, अंदर बह तपा पाप कमाए। हर अंदरला पाप पंचा नो उगा कर वेखा लिया, धर्म राय जम कंकरा नो आख छड़िया। इस तपै नो तिथे खड़ पायो हो, जिथे महा महा हत आरिया। फिर इस तपे दै मोहे कोई लगो नाही, एहो सतगुर है फिटकारिया। हर कै दर बरत्या सो नानक आख सुनाया, सो बुझै जो दइए सवारिया। महला चौथा, हर भगता हर आराध्या, हर की वड्याई हर कीर्तन भगत नित गाम दे, हर नाम सुखदाई। हर भगता नो नित नावै दे वड्याई, बख्शियन नित चढ़ै सवाई। हर भगता नो थिर घरी बहालियन अपनी पैज रखाई, निंदका पासों हर लेखा मंग सी बोधे सजाई।

0: बस कर ली बस कर ली
1: अमृत नाम महारस पीने अमृत नाम महारस पीने
0: पजो भगवान
1: निर्पयो भगवान साध संगत में लकीनो दान साध संगत में लकीनो दान शरण परे प्राव अंतर्जाम शरण परे प्राव अंतर्जाम नानकी ओट पकड़ी प्राव स्वाम नानकी ओट पकड़ी प्राव स्वाम नानकी ओट पकड़ी प्राव स्वाम नानकी ओट पकड़ी प्रभु स्वामी नानकी ओट पकड़ी प्रभु स्वाम क्या श्री शान गोविंदे मकंदे उदारे अपारे हरिया करिया नाम में अकाम गोविंदे मकंदे उदारे अपारे हरिया करिया नाम में अकाम नाम में अकाम ढाडी दरबा मंगना दर कदे न ढाडी दरबा मंगना अंदर करे न छो मरता गोविंद संग सच भोजन जो मरता गोविंद संग सच भोजन जो प्रीत लगी हर नाम स्यों ए हस्ती घोड़े प्रीत लगी हर नाम स्यों ए हस्ती घोड़े राज मिल खुशियां कणी चाहे मुख न मोड़े राज मिल खुशियां कणी चाहे मुख न मोड़े ढाडी दरबा मंगना अंदर कदे न छोड़े ढाडी दरबा मंगना अंदर कदे न छोड़े नानक मन तन चाहो ए नित प्रभु को लोड़ नानक मन तन चाहो ए नित प्रभु को लोड़ धन वाहे गुरु एक तू ही एक तू ही एक तू ही एक तू एक तू ही एक तू एक तू ही एक तू एक तू ही एक तू एक तू ही एक तू एक तू ही एक तू एक तू ही एक तू एक तू ही एक धन धन मेरे प्यारे गुरु नानक देव साहब तू ही निरंकार तू सदा सलामत निरंकार तू ठाकुर ऊच भगवान नानक की भरा बेनती अपनी भगती ला धन धन मेरे प्यारे गुरु नानक देव साहब तू ही निरंकार तू सदा सलामत निरंकार तू ठाकुर ऊच भगवान नानक की भरा बेनती अपनी भगती लाए धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज धन धन बाबा नन सिंह जी महाराज धन धन बाबा नन सिंह कोट कोट प्रणाम भुल चुक माफ तेरे चरण कमला पास बहुत बहुत धनबाद नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे स्वादा पा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल।